अपने आप सजो अपने रचो नाम तू कुदरत सजिए करे असन डिठो चाओ दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जानो ये सबसे